सिर्फ मिठियां ही स्वीट चीजा ही नहीं, और बहुत सारी चीजा जो प्यारियां लगदियां स्वादलियां लगदियां कहते मिठियां समझ के उन्होंने खाया, पर कौड़ा उपजा साग, पर उन्होंने रिजल्ट जो है अखीर दे जाके वो स्वाद कौड़ा निकले, उस दे चुकड़तन निकली, शरीर ने ही वो बीजिया पर शरीर में ही वो भोगना पै गया, भोगंग तरोगंग, शरीर ने ही भोगां दी मौज माणी पर शरीर नूं हुण रोग भी सहने पैने हैं, भोगंग तरोगंग, जितने ज्यादा भोग उतने ज्यादा रोग, जितने ज्यादा डिशेज उतने ज्यादा डिजीज। गुरु बाबा जी कहते हैं ये तन मेरा कोई सफला करदा है, वरना इस तन दे नाल मैं रोग अते दुख अते पेन ही ग्रो करदा हां, वो खुद मैनू खानी पैंदी है, उदों बड़ी तकलीफ हुंदी है। महाराज जी एक जगह होर बाणी चाकदे हैं, कहते हैं जे सौ वरिया मिठा खाए, कहते हैं

तपस्या करें। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इन्हां दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ये तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नूं निर्मल बनाण दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब, संजम दा मतलब कि ओ अपनी नीड्स नूं घटावे, अपनी नीड्स नूं अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नूं देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसनू उसमें खरीदना ही। बहुत वाइजली अपनी नीड्स नू समझे, अते अपनी नीड्स नू वद तो वद सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे बहुत ब्यूटीफुल, एलिगेंट, पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनू ही, अपने बिल्स पूरे करनू ही, सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करी? कबीर साहब ने आख्या है, सादा जीवन जियो। ग्रिस्ती ओ है जिस दे जीवन दे विच केंदे, जड़ा ग्रिस्ती जीवन दे विच बैठा होया इना चीजां उते कम करदा है, अपनिया इंद्रियां नू कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उते ओ फते पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओदी तपस्या करदा है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जप तप संजम भिख्या करे, इस गल दी वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है, कहिंदे ओ पुन दान दा एक मॉडल बन जाए, भाव पर उपकार अते सेवा, इस तों अलावा उसके शरीर का कोई मकसद ही ना रह जाए। शरीर तो यही कम लो। सो गिर ही गंगा का नीर, कहिंदे ओ है असल ग्रिस्ती, अते गंगा दे नीर तो भी, गंगा दे जल तो भी ज्यादा ओ पवित्र इंसान है। ऐ महाराज जी सानू साधना प्रैक्टिस दसदे हन, कहिंदे हन कोई भी अगर मैनू मेरे तन नू सफला करा दे, मैं अपना तन उसनू वेचण नू तैयार हां, प्यार नाल गाओ इसनू।

संत जनो किवें उसे वाहिगुरू नूं पाए ऐ सुहागणी मैनू भी दस मैं भी अपने पति नूं खुश रख सकां कोई ऐसा गुण दस ते मेरे हजूर पातशाह कहंदे ने आ मैं तैनूं दसां सहज दा सिंगार कर सच्चा ते संतोख सच ते संतोख इन्हां दा सिंगार करके ते फिर बोल।

चौपी बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम कावो आप हाथे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख स्वै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब एरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें झाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं

जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचन उपजायो आद अंत एक अवतारा सही गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सिवकन को सिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बध कियो कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछान चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन

जब उत्कर्ष करा कर तारा परजा तर्थ तब दे अपारा जब आकर्ष कथो कबू तुम मैं मिलत दे तरसबू जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत दरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार जलम आत अनिल अनाथ असम ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमान महामूढ़ कर

आप आपनी बुद्ध है जेती पर्ण पिन पिन तुहित रीती तुमरा लखान जाए पसारा कहबत सिजा प्रथम संसारा एक के रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा अंड जेर जसेत जकीनी उत्पुछ खान बहु रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो संग्रह कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव आजगा स्वरूप स्वयंपव अवृच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्टि।

जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोख तह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जोकल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नि आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट रह तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छा छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवार काल फास्ते तय उबार जिन्नर नाम तहारो कहा।

ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेहु लोग परगासी देखत दर्श पटिक ब्रह्म पजित दुख पर हर सुख सहज बिगासें सेवक सिख सदा

जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ माने तुम मलियागर

0: खालसा जी आज सब तो पहला अमृत दे दाते सरबंस दानी कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बख्शिया फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

सिमरन सेवा कुर्बानी ते वीरता दियां दातां नाल माला माल होए अपने सिख नूं मेरे कलगीधर पातशाह कुछ होर बख्श के पूरन पुरश बनाउणा चाहुंदे सन। आप दा इह विचार सी कि गुरु नानक देव जी दे बनाए सिख नूं किवें दूजियां नालों वखरा कीता जावे। जिस कमजोर भाईचारे चों इह तत कढ़िया गया सी किते समा पा के फिर उसे विच ना मिल जावे। पंजवें पातशाह ने मर्द नूं शहादत दा जाम पीण दी जाच सिखाई सी किते ए जाज भुला ना बैठे। मीरी पीरी दे मालक ने मीरी ते पीरी कठियां कीतियां सन किते चिर पाके फिर वखो वख ना हो जान। आखिर कुछ अजिहा करना चाहिदा है जिस नाल ए सब कुछ स्थिर रह सके। ए धारना धार के हजूर ने सारियां संगतां नूं ए हुक्मनामे भेज दिते के विसाखी ते भारी दीवान सजेगा जिस विच दूर नेड़े तो संगतां हुम हुमा के पहुंचन। 1699 दी विसाखी नेड़े आई ता एक दिन पहला ही आनंदपुर साहिब विच पंडाल संगतां नाल खचा खच भर गया। पंडाल दे एक पासे वल कुछ खास ढंग दा तख्त बनाया गया। तख्त दे पिछले पासे दोहरे पर्दियां वाला तंबू सी जिस दा बुहा उस थां खुलदा सी जिथे हजूर ने खलो के संगतां नूं दर्शन देने सन। संगतां दियां नजरां उधरे ही लगियां होईयां सन कि तंबू दा पर्दा हिलिया ते महाराज रवां रवी तख्त दे उत्ते आ खड़े हो गए। हजूर दे बाहर आउंदिया ही खुशी दे जयकारिया नाल पंडाल गूंज उठिया पर महाराज दा अनोखा रूप वेख के चारे पासे चुप वरत गई। महाराज दे सज्जे हाथ विच श्री साहिब चमक रही सी अते हवा विच जरा जरा कंबदी तलवार वल वेख के हजारां दिल कंब रहे सन। अंत महाराज ने बड़ी गर्जवी आवाज विच कुछ कहा। ओ जोश परे बोल जो महाराज संगतां नूं कह रहे हन ओना बोलां नूं अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दियां बीबियां दा ढाडी जथा आपदी सेवा विच है।

सद्गुरुनाम समझ गया, सद्गुरुनाम शरण प्रगट गया। कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर परवा, सिंह भुके निकाबली पन्नी जाए नदी परवा।

संतन का रखा उसत कर कर जीवा नानक नाम महारस लिखा अंधिन मन पुस्तक करया करो भाई गुरु जी पुस्तक मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सहेला पुस्तक गुरु चंगा कर दिता है ना ओदे विच भी रह के धन गुरु नानक कहते जी वाहेगुरु ने पुत्र की दात दी है पुत्र नाल भी प्यार करो पर ओदे नाल प्यार जरूर करो जिन्हें पुत्र बख्शे है आखो जी गुरु बाबा जी कह लगे निंदा करनी है अपनी करो उस्तुत करनी है गुरु दी उस्तुत करो ये गुरुमुखता है ये गुरुमुख दी चाहिए तो प्यारे साध संगत यह वचन ना बोलिए जिदे नाल किसी का मन दुख जाए हरीब जी ने जे सबना मन मालिक ठाहण मूल मचांगवा जे तो प्रिया जी सिके तो न खाई गुरु नानक दास जी जेदा गुरु इतना मिठा हो सिख तो कदे नहीं तोड़ना ना प्यार भरे बचन चंगे वचन करो भाई चंग्याई दुनिया में बदलेगी सिख दी ये ड्यूटी मेरी ड्यूटी है आप जपो अमरे धाम

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं बसता, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा जी रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी की विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नियां, होर भी कई कुछ

मित्र कुटुंब तन पवन मम ए मेरे मित्र मेरा कुटुंब ए तन रहण वास्ते सोने पवन समृद्ध कहंदे ने सगल समग्री ए मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन दौलत रहण वास्ते घर ये सारी जिहड़ी समग्री है कृपा करतास खालसे ने मेरे ते कृपा करके ये सब कुछ मैनू दिता। सत्संग धन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज है ने गुरु नानक दा रूप पर जे निम्रता वल जाइए ते कित्थे तक जा पहुंचे ने कि सारा कुछ खालसे ने कृपा करके मैनू दिता है। कवि सुंदरदास जेड़े आनंदपुर साहब रहा करते सन वो कहंदा मैं आनंदपुर साहब रह के देखे है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार कि जिन्हां राजिया महाराजिया मिलना बड़ा औखा है जिन्हां राजिया महाराजिया की एक झलक देखनी बड़ी औखी है उन्हां राजिया महाराजिया मैं गुरु गोबिंद सिंह के दरबार से दरबान बन के पहरेदार बन के खलोते देखे वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिदे दर से वड़े वड़े राजे महाराजे आके झुकते ने ओ गुरु इतनी निम्रता इस निम्रता विच आके कह रहे ने कि मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन रहण वास्ते घर सब कुछ खालसे

सत्संग मिले सो तरिया, मेरे माधव जी सत्संग मिले सो तरिया, गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा, कर कर बाबा गावी है बज्जल ताल मृदंग बाबा।

सत्संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो तरिया, साध संगत हुए निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, साध संगत होए निर्मला, कटिए जम की फास। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरिया, कहे कबीर सुनो रे संतो।